0: करो हाथ पैर अच्छा, पूर्ण होए चित की इच्छा।
1: तब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा।
0: हमरे दुष सब है तुम कावो, आप हाथ मोहे बचाव हो।

0: रह प्यासा,
1: तो मैं शायद कोई अवन न त्याऊं, जो पर चाहूं तो तब ते पाऊं।
0: सेवक से कुमारे तारिये, जन जन सत्र हमारे मारी है।
1: आप हाथ है मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास ने वरी है।
0: जो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तो जो करे और अच्छा।
1: राख ले हो मुहे राख नहारे साहिब।

0: फूल राजा हुआ बैठा कऊ समेट पे शंकर खैठा
1: सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपा व्याज जगत स्वरूप से अंबव
0: अब रक्षा मेरी तुम करो सिख अबार सिख संगरो
1: सकल मलेश करो रणकाता
0: जयस्त तब सरनी परे तिनके

0: कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सब राता
1: सकल देखो हरता दोस्तों की कोशिश करता
0: श्री अस्तुत जप दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला
1: मन बांसत फल पावे सो ही दुख न तसे व्यापत कोई
0: अड़ेल सुने गुंग जो यह सुरसना पा

0: संबत 17 सहस्पन इज्जय
1: सहस्पन तीन कह जय
0: भादर सदी अष्टमी रविवार
1: तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा
2: हित श्री चक्रो पखियाने
1: त्रिया चरित्र मंत्री भूख संबद
2: चारे सौ पांच चरित्र समापत
1: मस्त सब मस्त आफजो
2: हरा दास जान कर दास पारे की जय कृपा अपारे
1: पाप हद राग मोहे मन क्रम वचन विचार
2: पई मैं नग्ने सह प्रथम नाऊ
1: किसन बिसन कब होने त्याऊ
2: मान सुने पहचान न तिन सो
1: लिव लागी मोरी पगेन सो
2: महाकाल रखवार हमारो
1: महालो मैं किंग कर थारो
2: अपना जान करो रखवारे
1: गाय गई की लाल विचार
2: अपना जान मुझे प्रत परिये
1: चंचल सत्र

0: जी तुमरे ध्यान को नित उठते हैं संत,
1: अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत।
0: दोहरा काल पुरख की देह मोह कोटक बिशन महेश,
1: कोट इंद्र ब्रह्मा के तेरा सस क्रोर जलेश।
0: दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाहत नेत,
1: स्वर्ग बास रघु बर करा सगरी पुरी समेत।
0: चौपाई जो यह कथा सुने अर गावे
1: दुख आपते निकट नावे,
0: कृष्ण भक्त की ये फल होई
1: आद ब्याज छुए सके न कोई।
0: सम्मत सत्रह सहस पचावन
1: आड़ दी प्रथम सुख दावन,
0: वह प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा।

सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध देव छलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए तिस दे चानन सब मह चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस पावे सुवारती होए। हर चरण कवल।

0: आ जाओ इधर घूम के आ जाओ, ऐसे ऐसे अंदर ऐसे नहीं, इधर से आ जाओ ऐसे नहीं करना, नो नो प्रॉब्लम कोई बात, खाना खा के जाना। जय भाई भी पाँच पाँच से
1: कैसा
2: है?
0: उनकी खातरदारी करना,
3: हम लोग पोंकट में रहते हैं, हम लोग ऐसे आए थे घूमने के लिए, फिर हमने बिल्डिंग देखा था, हम सोचे जाके देखते हैं क्या चीजें हैं, तो हाँ हमें लगा कोई होगा बिल्डिंग,
0: अगर आप ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा अच्छा बिजनेस चाहते हैं ना, तो आप संडे को आना, संडे को आप 10:30 बजे आ जाना, इधर बहुत संडे को 10:30 बजे आ जाना, 2 बजे तक चलते हैं, बहुत संडे आती है दूर दूर।
3: बीरजोत शस्त्रानी

दुख जाय। नानक बोले सहज सुभाय। चार पदार्थ जिक मांगै सा जनक सिवा लागै। जिको अपना दुख मिटावै हर हना हृदय सदगावै। जिको अपनी सुभाय लोरै सा संग होमै शोरै। जी को जन्म मरण ती डरै साध जनक शरण परै। जह जन का प्रवदर प्यास नानुता को बैल बल जासा। सकल पुरख मुरख प्रदाय सा संग जा को मिटै अभिमान सकाउ। जो जाने नीचा सो गनिया सबद ऊचा। जा का मन हुए सकल की रीना हर हना तिन काट काट दीना। मन अपने ते बुरा मिटाना पीख सकल श्रेष्ठ साजना। सुख दुख जान समुद्र स्थित नान पाय पुन हिले पाय। निर तन को तन तिरु ना उन था विको ना उन तिरा था। उन मन का प्रभु तिरु मान सकल कटा को दिवह दान। करन करावन हार स्वामी सकल कटा के अंतर जब मैं अपनी गात में जान हूँ। आय पी अपने संगवा प्रभराती तुमरी उस्तत तुम दि हुए नान कवरण। जान सके सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जब निर्मल कर्म। सकल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्म तुम्हारे हिरिया। सकल उद्यम है उद्यम पैदा हर का नाम जप जी सदा। सकल बैन में अमृत बैन हर को जासन रसन बखान। सकल शांति हो उत्तम था नानक जी काट वास। हर नाम सलोक निर्गुण यार यानी असो प्रभ सदा समार। जिनकी आदि त्राख नानक निर्भ नारष्टपदी।

सुर पंख पिंगल पर्वत पार पवन नहीं हो तुहा उस कवन करता करुणा मैं दीन बेनती कर नानक तुमरी कृपा तरह संग सहाय सुवावे न जीत जो वैरायु तस प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसन।

दुखानुप्रकाश प्रभु सो प्रसाद नुभाषा मान सो प्रभु दया तुम तू तुम सर्वन धान प्रभु तेरी माया या पह कशु न करुह लया जेत जेत लाभ तत लग हर नाथ नानक इनक कशु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह समुगताय संविता नानक बिनवंता साधु जनक अचरज कथाष्टपदी साधु का संग मुख उजल होत सासंग में सगरी खोत साधु हम मिटे अभिमान साधु प्रगट सुज्ञान साधु हम बुझ प्रभु निगरा सासंग सबोधन बीरा साधु हम पाय नाम रतन साधु हम गे कुपुर जतन साधु की महिमा वर्ण कर्ण प्राणी नानक साधु सुवा परम समानी साधु के संग गोचर मिला साधु हम सदा प्रफुल साधु खंगा वह वह पंचा साधु संगम रत्र पंचा साधु संग सब की दीन साधु के संग न हर बैन साधु के संग न कद हूं ताव साधु संग सतमन पाव साधु के संग वायत पेन साधु संग नानु प्राव सुप्रसान साधु संग दस समीत साधु संग महापुनीत साधु संग के सिंह नह बैर साधु के संग न बिगा पैर साधु के संग नाह कुमंदा साधु संग जन परमानंद साधु खन नाह हताप साधु खन तज सब या बप जन साधु बड़ाई नान साधु प्रभु बनायो साधु के संग न कबू हुताब साधु के संग सदा सुख पाय साधु संग व्यवस्था गोचर रह साधु के संग आजार सह साधु के संग वसा थान ऊचय साधु के संग महल पाय ऊचय साधु हाँ दृढ़ सब धर्म साधु हम केवल पार ब्रह्म साधु के संग पाय नाम निधान नारंग साधु के कुर्बान साधु के संग सकुल उधार साधु संग साजन वीत कुटाम निहतारा साधु के संग सोतान पाव जहतान तेज साहु को प्रसाव साधु संग धर्म राज करे सेवा साधु के संग सोवा सुर देवा साधु के संग पाय पलायन साधु संग अमृत गुण गायन साधु के संग श्रव थान काम नानक साधु के संग सफल जनाम साधु संग नहीं काश काल दर्शन पीड़ित हो दिन हाल साधु के संग कलूख धर साधु संग अर्घ पर हर साधु के संग ईहा उह सुहिला साधु संग बेशरत हर मिला जो ईशा सुई पर पाव साधु हम व्यर्थ ज पार ब्रह्म साधु रत बस नानक उदर साधु सुनरा साध साधु हम सुनो हर नाव साधु संग अर्घ गुण गाव साधु के संग नमांत बेसर साधु संग सर पर नहतर साधु काम लगा प्राम बीठा साधु के संग काट का डीठा साधु संग भय आज्ञा करे साधु संगत भय हमारी साधु के संग बेटे साहु रोग नानु साधु बेटे संजोग साधु की महिमा वेदना जन जेता सन देता बखिया न साधु की उपमा देहो गुण ते दूर साधु की उपमा रही पार पूर साधु सुबह का नाह अंत साधु सुबह सदा वे अंत साधु सुबह उजते उज साधु सुबह मूजते मूज साधु सुबह साधु बन आई नानक साधु प्रापेदना पाय श्लोक मन साचा मुख साचा सुवना पीख स्वयं को नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हुए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलीप जह जाल मह कमरलीप ब्रह्म ज्ञानी सदा नरदोख जह सूर सर्व का सुख ब्रह्म ज्ञान के दृष्ट समान जैसे राज रंग कौलागत उपवान

कह कह विनाशन जाव पूर्ण कर्ता प्रास हो ताव जम के त्रास कह हो के सो जाव अवगत या गोचर प्रवी कथा चतुर गुप्त के स पुरुष लिख जाओ नाथ निरंजन गोचरा गाद कहूँ छुट्टे कान बंधन बाधि

तह कौन को मान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीस तह शाल शर लगत कह कीस जह जूत स्वरूपी जो संग समाव तह के सब को कौन त्रिवताव कन करावन करने या नान करते का नह समार जब अपने सुवापन संग बनाय तब कौन वाय वाय मित्र सत वाय जह सर्व कला या वह परवीन तह वेद देव कह कुचीन जब अपना पुआ बुर तार तब सगन अब सगन कह विचार जह अपन ऊजा अपना जीरा तह कौन ठाकुर कौन कह चीरा विस्मन विस्म रह विस्म नान कपनी गत जान हुआ जह अशाल छेद भेद समाया

विस्तार पाप पुनता पई कहावत कुंडर को सर्वंशावताल जाल माया जंजाल हौ मै मोह परम पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्या नापन खेराव कर देखा खेर संकोचा तो नानक कह जह अवगत भगत तह आप जह पसरा पासार संत प्रताप दुह पह कया पह तन उनकी सुबह नुह बनिया पह कौत कर आनंद चोज

अलग हरंग। जय जय सवधाना हदवा जय सोन सुनंद करि प्रभु गाय जय प्रगति गोपाल महांत कैमाथि नैन कुदरत का साथी शरण जोग संसरण आय कर कृपा प्रभु आप मिलाय मीट गए बैर पय सबरी नम्रत नाम सा संगलैन सब प्रसन्न पय गुरदीप गुण हुई सेव किसी वाल जंजाल विकार ते रहते राम नाम संरसना कहती कर प्रसाद दया प्रवता नानक निर्वही महामारी प्रभु की व्यवस्था करहु संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखने सहज गोविंद गुणा हमारा बसा शोधन दान सर्वेच्छा त्याग पूर्ण हो प्रदान पुरख प्रकट सर्व सत्य बुझ पाया स्थान वाहन होया वन जान हर तन खट चला जान सो नानक जैसे प्राप्त हुई खीम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वना से विद्या ताप जोग प्रभु ज्ञान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नायन चार पदार्थ कमल प्रकाश सब का मद सकल देवता सुंदर चतुर्थात कविता सुंदर शीघ दृष्टिता इह फाल तेह जान का मुख पने गुरु नानक नाम वचन मन सुने हुन दान जप मन कुए सब जोग महता की गात हुई गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमर शास्त्र वेद बखाणी सकल मतांत कीवला नाम गोविंद भगत का मन विश्राम कोड़ अपराध साधु संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटाय साधु संत कृपा ते जम ते छुटाय जाक मस्तक करम प्रभ पाई साधु शरण नानक ती आई जिस मन बसाय सुनाय लाय प्रीत इस जनावे हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारण दुर्लभ दिख तत्काल उदार निर्मल शोभा।

है हर बिन अवर ना कोई कहे नानक नेत्र अंध सी सतगुर मैं देव दृष्ट हुई ईश्वर नु मेरे हु सच सुन बिठाए सच सुन बिठाए श्री लाए सुनो सतबाणी

जित मिले सब सोग संतापे, सुख अटल गुर सेविए, अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु के।

0: आत्मात्मा जाचक जनम रण बहीन
1: चक्र बकर चतु चक मानी प्रतीन
0: लोक 14 के बिखै जग जापै जे जाप
1: आदि विनाद मूर्था पे सब जे ताप
0: परम रूप पुनीत मूरत पूरम परख पार
1: सर्व विश्व रचय स्वयं गणन भंजन हार
0: कालहीन कला संयुक्त काल परख देश
1: धर्म काम सुवर्ण लय दे पूते राखे पेश
0: अंग राग न रंग जाके जात पात ना नाम
1: गर्व गंजन दोष्ट भंजन मुक्त लाए काम
0: आप रूप में कनस्तत एक परख अवधूत
1: गर्व गंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत
0: अंगहीन अपंग नातम एक परख पार
1: सर्व लायक सर्व कालिक सर्व कोपित पार
0: सर्व गंता सर्व भंता सर्व तेन पीक
1: सर्व शास्त्र न जाने जे बिरंगे रेक
0: परम वेद प्राण जाके नीच पाखत नित
1: कोट से मृत प्राण शास्त्र न आवे वो चित
0: मधुवार छंद वा प्रसाद गन गन उदार महिमा अपार
1: असम पंग उपाना
0: को प्रकाश निस्त नाना।

0: निर्वाण काम सकमद सकम चाचरी छन त्वा प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे जंग प्रया छंद चत चक्र कर्ता चत चक्र हर्ता
1: चत चक्र दाने चत चक्र जाने
0: चत चक्र वर्ती चत चक्र प्रति
1: चत चक्र पाले चत चक्र काले
0: चत चक्र पासे चत चक्र वासे
1: चत चक्र मानिए चत चक्र दानिए
0: चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पितृ
1: न कर्म न काय जन्म न जाय
0: न चित्र न मित्र परे है पवित्र
1: प्रतिशे दिशे दिशे किशे
0: भगवती छंद त्वा प्रसाद कथते क्या चिज देश है क्या पिज पेश है
1: क्या गंज कर मैं क्या पंज पर मैं
0: क्या पिज लोक है क्या आदत सोक है
1: क्या तूत बन है के बेबूतर है
0: कि राजन प्रभा है कि तरमंत जा है
1: क्या सुख बन है कि सर्पा बन है
0: कि जतरंग क्षत्रिय है कि छतरंग क्षत्रिय है
1: कि ब्रह्मक स्वरूप है कि अपरूप है
0: मद देव है कि आप अपेव है
1: कि छतरंग वही न के कह दिन है
0: जीरे जाकर रही में रहा
1: कह बाप अब है कि क्या फल गैप है
0: क्या फल गुनाह है कि सहान सा है राज करीम है के कर्म करीम है
1: के सर्वं कली है के सर्वं दली है
0: के सबतर मानिए के सबतर दानी है
1: के सबतर कौन है के सबतर कौन है
0: के सबतर देश है के सबतर पेश है
1: के सबतर राज है के सबतर साज है
0: के सबतर दीन है के सबतर लीन है
1: के सबतर जाओ के सबतर पाओ
0: के सबतर देश है के सबतर पेश है
1: के सबतर काल है के सबतर पाल है
0: के सबतर अंता के सबतर गंता
1: के सबतर पेटी के सबतर पेटी
0: के सबतर काज है के सबतर राज है
1: के सबतर सुख है के सबतर
0: के सबतर त्राण है के सबतर प्राण है
1: के सबतर देश है के सबतर पेश है
0: के सबतर माननीय सदैव प्रधानी है
1: के सबतर चाप्य है के सबतर थाप्य है
0: के सबतर प्राण है के सबतर मान है
1: के सबतर इंद्र है के सबतर चंद्र है
0: के सर्वं कली में के फर्मं फहीमे
1: के आकुल कलाम है के साप कलाम है
0: के उसनो वजू है तमाम रजू है
1: हमेशा सलाम है सदी हित मदाम है
0: गनीम से खस्ता गरीब परस्त है
1: बिलंजल मकान है जमीन और जमान है
0: गनीमुल तमाम रजू अल निधान है
1: हरी फल जीमा रजा
0: निकल तरंग है अपेद है पांग है
1: जीजो निवाज है गनीमल विराज है
0: रक्त स्वरूप है तरमुक्त विभूत है
1: रक्त प्रवाह है सजग सदा है
0: सर्वंग स्वरूप है अपेदी अनूप है
1: समस्त पराज है सदा सर्व साज है
0: समस्त सलाम है सदा वंग काम है
1: निर्बाध स्वरूप है गाध है अनूप है
0: अंगाध रूप है अनाज स्वरूप है
1: अनंगी है नाम है त्रिभंगी त्रिकाम है
0: त्रिभंग अंतर्बाध्य गंजे अगाधे
1: सर्वंग सर्वभाग्य से सर्वान रागे
0: भक्त स्वरूप है छेद है च्यूत है
2: नरक प्रणाश है पृथ्वी इतिहास है
0: नरक प्रभा है सदा एवं सदा है
1: विभक्त स्वरूप है प्रजापति अनुप है
0: नरक सदा है विभक्त प्रभा है
1: अनुप्त

0: भक्त विरक्त न सबका सह मालिक है पिछड़ता है गा है नित हसनत है जात है जाद है सर्वंगता सर्वंगता
1: सर्वंगता
0: सर्वंग करता
1: सर्वंग प्राण सर्वंग प्राण
0: सर्वंग कर्म सर्वंग कर्म
1: सर्वंग जगता सर्वंग मुक्ता
0: सावल छंद त्व प्रसाद नमो नरक नासे सदा गुण प्रकाश से
1: अनंग स्वरूप अपंगम विभूते
0: परमात्म परमाथे सदा सर्व साथ
1: निर्बाध विभूते
0: नंगी नामे तरपंगी तरकामे
1: निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
0: न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र
1: न दाता न माता न जाता न पाता
0: सरीखे अमित अमीख है
1: सदैव प्रभा है जय है
0: भगवती जहन तो प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है
1: हमेशा सलाम है समस्त कलाम है
0: साहिब दिमाग है के उसन चराग है
1: कामल करीम है के राज करीम है
0: रोजी देहंद है के राज ग्रहंद है
1: करीम कमाल है के उसन जमाल है
0: मुख्य राज है गरीब नवाज है
1: हरीफ उसकन है राजब कन है
0: रंकंक पनास है समस्त निवास है
1: अगंजल कनीम है रजाई करीम है
0: समस्त जवाह है के साहिब के राह है
1: किनकम पनास है दस्तो निवास है
0: सर्वल गवन है हमेशा रवन है
1: तमाम तमीज है समस्त अजीज है
0: परमंग परम ईश है समस्त अजीज है
1: परेश ललेख है हमेशा रबेख है
0: मिनुल जमा है अमीकुल मा है
1: करीम कमाल है के जर्त जमाल है
0: कचलम प्रकाश है क्या मितो सुभाष है
1: क्या जब स्वरूप है क्या मितो विपूत है
0: क्या मितो पसा है क्या आत्म प्रभा है
1: क्या चलन नंगे क्या मितो पंग है
0: उद्बार छंद वा प्रसाद मन मन पर नाम गन गन वदाम
1: आर भार गांज हर नर पर पांज
0: मन पर नाम मन मन सलाम
1: हर नरे खांड भर नरे मांड
0: पवन आस मन मन प्रकाश
1: गुण गण प्रणाम जल पर मदाम
0: अच्छे जांग आसन पांग
1: उपमा बार गत मित दार
0: जल थल मांड दिस पे स पांड
1: जल थल महात दिस पे स्पे अंत
0: अपम नाश तर तर तरास
1: आ जान बाहु ही कैश लाहु
0: उनका रात कथनी नाद
1: खल कंड यार गुर रहे काल
0: कर कर पर नाम चे चर नाम
1: अंचे जगात अंचे जगात
0: अंचे जगात अंचे जगात
2: अंठाट पंडार अंठाठ अपार
0: अटी तरम अतीत करम
1: ब्रह्मानंद दाता महंत
0: हर बोल मना चंत प्रसाद करना ले है हर काले है
1: कंदन है मन मंडन है
0: जगतेश्वर है परमेश्वर है
1: कलकारण है सर्वार है
0: तित के तन है जग के कन है
1: परमाने है जगाने
0: है सर्वंग पर है सर्वंग कर है
1: सर्वाशय है
0: करना कर है विश्वंपर है
1: सर्वेश्वर है जगतेश्वर है
0: ब्रह्मंडस है खलखंडस है
1: करते पर है करना कर है
0: जप है सपा था प्या
1: कृता कृत है मृतम कृत है
0: मृतम मृत है करना कृत है
1: कृता कृत है तरणी कृत है
0: अंतिश है परमेश्वर है
1: कृता कृत है मृतम मृत है
0: अजवा कृत है मृतम मृत
1: है निर्नायक है खलकायक है
0: विषम पर है करना ले है
1: निर्पनायक है सर्पायक है
0: अपंजन है और गंजन है
1: विपतापन है जब जापन है
0: अलंकं कृत है सर्वा कृत है
1: कर्ता कर है हर्ता हर है
0: परमात्म है सर्वात्म है
1: आत्म बस के जस के जस है
0: जग प्रिया छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे
1: नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र
0: नमो अंधकार नमो तेज तेजे
1: नमो वृंद वृंदे नमो बीज बीजे
0: नमो राज संग ताम संग शांत रूपे
1: नमो पर

0: जद तार सबै सो बिचार हजारक देखै।
1: श्री भगवान पजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै।
0: सोध सबाह दुरंत दबास सार सना अंदर जान दलेंगे।
1: हरि गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख ले नाह लेंगे।
0: तोरे अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे।
1: श्री पा श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे।
0: वीर पार बड़े बरियार बिचार है सार की।

0: ऐसे ही ऐसे सब ऐसे बतायो
1: साच को फल ले उस बैजन प्रेम की ओ दिन ही प्रपायो
0: काहुला पाहन पूज तरियो सिर काहुला लिंग करे लटकायो
1: काहु लिखियो हरे वाची दिशावे काहु पुछा को सीस निवायो
0: को बदान को पूजत है पस को उम्रदान को

0: हितमय शरण तिहारी आप हाते लेहो बारी कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता
1: जय
0: सज पय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला।

हे बच्चों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। थोड़े जा टायर्ड लगते बच्चे आज। लेट्स डू इट अगेन। नहीं, ओके, चलो जोश ना। आपा फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। हाँ जी बच्चों, मच बेटर। चलो बच्चों, आज साडा दूसरा दिन कैंप का शुरू हो रहा। सो थैंक यू सो मच सारे बच्चों, पेरेंट्स नू जेरे आए हैं बच्चों ला के कैंप दे विच। बच्चों, जस्ट टू मेक श्योर, आज का जरा सेम स्कैड्यूल। पहली गल तुसी दसो मैनू, बड़े तरनवीर प्रसाद, ओके, पहली गल तुसी मैनू एक गल दसोंगे, अज का जरा हुक्मनामा सीगा कि गुरु साहब का हुक्मनामा सीगा? गुरु ग्रंथ साहिब जी तो है। हाँ जी, पर वेट, मनवीर सिंह, Sri Guru Amar Das Ji. And did anybody notice anything about the Hukamnama today? Shh. Just dhyan na suno. Did anybody notice? Kisi ne kuch dekha ke socha ke? Haan ji, Amritveer. It was Lok Mahalla Tija, haan ji. Anybody else notice anything? Shh. So you want to know something really special? Guru Sahib ne sanu same hukumnama baksha si kal vi and aaj vi. Okay? Guru Granth Sahib ji de vich kinne ang hai? Does anybody know how many ang there are? We don't call them pages, they're called ang. Amritveer?